इतना प्यार किसी से पहली बार आया है मैं तरंग आदर्य कोमद जीवित पलवनी वातावरण मैं तरंग देने

सुबमन धरम रात्रिया क्वेवा तरंगा सहोदरी हम दामत मम मागे हितत तक थानियम खतावक एक अतावे मात्र कावने मामा योया मातक तो याता आप गे उपे हैंदे वरु अत्तालगे न वैवे उड़ी हा ऐवी दिगे तरम ए दवसाए ने नया माय रात्रा मांगी ताई टी मागे मातक वलिं पिरी लहती होया हादवत गेला मंदु पतुनात मिला मुदाल वलिं मागे आदरे हरी हाई मागे आदरे हरी पोहसत एवनात ओया हेवे वेन देवा मां बलांग इद्दी में आदरे आई थी मागे असिसर हम ओया दुने वेन केने कुटा निक मटे वाथी तुए नया मांगे न आई थी अग्नेत वुनात ओया ट आदरे देन नले बुनु एक मटे सत्तुटक सन सीमाक ए मतक आय आय मतक कर कर तमाई मंदें जीवा तो एन्ने आई थी अक्या गन्न बरियो न मता मता आदरे मांजना

सुबह मंदा रम रहा क्ला बंदिया आईती ऐती आये लंग आदर्यक नती विटे का आईती नती आये सोयाई आदर्यक एविटा असम्मते आय कियना कथिकावत एविटा पर दक्ति एविद माम दक्षिणा लेसटा ऐम क्या निले रंगना समार विटा नुम्बे विया है क्या मेही अन्नट पर नुम्बे मातक के पीरनो याकड़ पेट्टिया मामा गेनी तापुए में मातक के राष्ट्रीयक मानुष्य कुट महाबारा बावसितीनी मोकेट दाय मामा काल्पना कले में नत बोरुए की मट तावा मात सिते ऐत हिस अतुल हाँडा कहेगा सुनवाया से तो जीवत पिन्ने ऐनी साई ऐ हाँडे कागे दाय मामा नदनी में समार विटनु बेवी है का मैं तो उत्तम गेम वेनस कुमार दिवस्तु मैं वाट कुमार करने दे माटे बैठे ही मग में था नुबे सिटियाना मामा नुबे नसमी नुबे माटे किया नु ऐता मगे हिस्से पिरिमा दिने ऐता उदास देने तीन बाला माँ वैलेंड गानो ऐता मामा वासना वांते नाम मासी पगानो देता पशु पिलित्रु देनो ऐता नुबलांगे हमें प्रश्न है कटम उत्तर यक्ति बिनी अवसाने माँ तहर गिये उत्तर यक्ले सिन्ने दा नुब अंतिम वरटे अत्रुगेन पिटवूदा सिटा इतने ते हिमालय शीतलकी नुब गिये उन्हें सुमत पाना त्रेगे नाई स्त्रिया केतरम निर्दय वान्ने के सेदे मटे तावे मस्सिते ए वेलावट मामा नुबटे साप करमे असनवाद धन्यवाद साप्या कुवत नुबे सिरुरे वदिन्ने प्रेम अक्लेसिनी माटे ईर्ष्यावक देने जननी भवंतिका हेट अपि हमु

सुबह मन धर्म रैक आई त्याग नैतिक में मामा ने बेटे आदरे कराना ए वेदनाओ मामा में दरागा नांगी थी एत मामा माता के वाले ताम आदरेन इतनी नहीं त्याग नैतिक था ना आदरे अत्यंत बेरी था होरनीन लालनी